समाचार प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं समाज कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारा कार्यक्रम संग्रहालय दिवस को समर्पित है, जिसे हर वर्ष विश्व में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस तिथि को समर्पित इस दिशा में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं।

0: वाह वाह वाह, शाबाश। वास्तव में जब अभी आपने गया, ऐसे फीलिंग होता है कि विदेशी नहीं गाता। ये गाना सैदखुल बिलोलव का है, आपने कहा, और मैं जानती हूँ कि ये गाना आपने गाया तजिकिस्तान वतनी अजीज ईमान प्रतियोगिता में, तो उनके पास ही गाया है ना। उनकी नजर कैसे थी, वे हैरान नहीं हुए?
1: वो हैरान तो हुए थे क्योंकि एक विदेशी लड़का उनका गाना गा रहा है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे को अच्छा इशारा भी किया कि अच्छे से और गाओ। और ये गाना उन्होंने पहले भी सुना था, क्योंकि उन्होंने एक बार बताया था कि ये गाना उन्होंने पहले भी सुना था मेरा, क्योंकि मैं इस गाने को ओस्पून से पहले कई जगह गा चुका था। और ये गाना फिर मैंने, क्योंकि ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस गाने को लास्ट राउंड में गाया,
0: अच्छा।
1: तो उन्हीं के सामने गाया। वो बहुत खुश हुए और मेरे को भी ये गर्व महसूस हुआ कि मैं ये गाना ओरिजिनल सिंगर के सामने गा रहा हूँ।
0: हाँ, इस समय लक्ष्य का एक गाना ताजिकिस्तान के बारे में सुनते हैं। बहुत धन्यवाद। उस प्रतियोगिता के बारे में आपको कैसा पता चला?
1: एक दिन मेरे पापा ताजिक टीवी देख रहे थे, तो उसमें ऐड आया कि तजिकिस्तान वतन अजीज ईमान, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये इसके ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। तो मेरे पापा ने सोचा कि लक्ष्य तुमने थोड़े बहुत गाने गाए हैं, ताजिक भी थोड़ी बहुत आती है, तो क्यों ना हम इस प्रतियोगिता में भाग लें। तो पहले तो ये देखना था कि खोरी जी वहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं।
0: हाँ,
1: तो पहले हम गए वहाँ पर, पूछे तो उन्होंने बोला अलाउड है, तो हम बहुत खुश हुए। फिर हमने गाना गाया, तैयारी करी, एमबीसी के बच्चों से मदद ली, म्यूज़िक टीचर से मदद ली, मेरे स्कूल के मम्मी पापा सब ने बहुत मेहनत करी। फिर मेरा एक राउंड, दो राउंड, तीस राउंड, फिर हमने सारा राउंड अच्छे से किया, प्रस्तुत किया। पहले तो था डिस्ट्रिक्ट का, पहले स्कूलों के लोग आए थे, फिर उसके बाद आए थे शहर से लोग
0: हाँ,
1: अच्छे से गाने, फिर आए थे पूरे ताजिकिस्तान से गाना गाने
0: अच्छा।
1: लोग। बहुत अच्छे सिंगर थे,
0: हाँ,
1: सब बहुत अच्छा गाना गाते थे। पहले तो जब मैं गया तो उन लोगों को लगा कि मैं ऐसे ही देखने आया हूँ या फिर किसी से मिलने आया हूँ। फिर वो मुझसे पूछते थे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तब तो मैंने बोला मैं यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर हूँ, एक इष्टिरोक्षी हूँ, तो मैंने यहाँ पर भाग लिया है। तो वो लोग सोचते थे अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर उन लोगों को लगा कि मैं हिंदी गाना गाऊंगा।
0: अच्छा।
1: फिर मैंने बताया नहीं, मैं यहाँ पर ताजिक गाने गाने वाला हूँ। तो उन लोगों को बहुत गर्व फील हुआ और फिर मेरी धीरे धीरे करके सबसे दोस्ती बढ़ी।
0: आपको ऐसे वहाँ भाग लेने में डर नहीं लगा कि कितने ताजिक लोग हैं, सब जो वहाँ हिस्सा लेते हैं सब ताजिक है, अच्छा गाते हैं, क्योंकि ताजिकी भी उनको आती है और गाने भी वे जानते हैं कि स्टाइल कैसा है गानों का, ताजिकी का, तो फिर क्या महसूस था आपको?
1: पहले तो मेरे को एग्जांपल हायो जोन फरोगिरी इस टाइप का
0: हाँ
1: हुआ मेरे को पहले। मेरे को डर नहीं लगा क्योंकि अगर कोई सिंगर अपने परफॉर्मेंस से पहले नर्वस हो जाए या डर जाए तो उसकी आवाज़ में फिर फ़र्क दिखता है। तो मैंने बेझिझक बेडरे मैंने अच्छे से गाना गाया।
0: आपका उद्देश्य वहां जीतना था या बस
1: नहीं,
0: भाग लेना?
1: मेरा उद्देश्य ये था कि अच्छा प्रस्तुत करना,
0: हाँ
1: कि मैं खोरी जी हूँ और मैंने यहाँ पर गाना गाने की कोशिश करी। मेरा बस ये था कि अच्छे से परफॉर्मेंस कर देना, पोजीशन कुछ भी लगे पर मेरे को बस अच्छे से परफॉर्मेंस देना था। मेरे को पहले पता ही नहीं था कि मेरी सेकंड प्लेस लगेगी, और मेरी जब सेकंड प्लेस लगी तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरे फादर भी बहुत खुश हुए, पर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। उनकी आंख में आंसू भी आ गए थे ये सुनते से ही। तो जब मेरे को वहाँ पर मौका मिला दिखाने का, अवार्ड मिला, तो सब बहुत खुश हुए थे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर लोग इंडिया को इतना पसंद करते हैं, हिंदी गाना गाने की बहुत कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को मैंने ध्यान पे रख के देखा कि यहाँ पर म्यूज़िक, बीट, ये सब अलग-अलग हैं, ये अलग टाइप के गाने हैं। तो अगर मैंने सोचा अगर ये लोग हिंदी गाना गा सकते हैं तो हम इनका गाना क्यों नहीं गा सकते।
0: हाँ, बिल्कुल। आप गाते हैं और बजाते हैं, तबला बजाते हैं, और हमारे देश का और आपके देश के कलाओं में भी समानता है, तो आपकी नज़र में किस चीज़ में है समानता?
1: पहले तो भाषा
0: हाँ,
1: यहाँ के गानों पे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जैसे ओसमोन जिंदगी आ जाता है वो शब्द,
0: दिल
1: दिल, محبت یہ سب آ جاتا ہے اور اوپر سے یہ یہاں کی بیٹ بھی انڈیا کے سمان ہے تھوڑی تھوڑی جیسے کہ جو کلاسیکل ڈانس سیکھتے ہیں ان کو شاید معلوم ہوگا کہ ایک تال ہوتی ہے روپک تال جس میں سات ماترا ہوتی ہے یہاں کی بیٹ بھی ویسی ہی ہوتی ہے سات ماترا والی تو ہمیں تو سیم لگا اور ڈانس میں بھی بہت سملر لگا کچھ کچھ جگہ کیونکہ کلاسیکل ڈانس بھی ایک حد تک ویسا ہی ہوتا ہے جہاں پر شاید تاجک ڈانس ہوتا ہے اور میں گاتا ہوں بجانا گانا میں نے اپنے پاپا سے سیکھا ہے اور ڈانس بھی میں کوشش کرتا ہوں کرنے کی اور وہ میں نے اپنی ممی سے سیکھا ہے بچپن سے
0: میں نے ایک پروگرام میں دیکھا کہ آپ نے ڈانس کیا
1: وہ میں نے کوشش کری تھی دکھانے کی کہ اچھا کوشش کروں وہ میری ممی نے میرے کو ساتھ دیا تھا کرنے میں سکھایا تھا میرے کو تو میں نے کوشش کیا اچھا سا کرنے کی
0: اچھا وہ اس پرتیوگتا کے سوا کون سے اور پرتیوگتائیں تھے کہ آپ نے بھاگ لیا تھا
1: ویسے تو تاجکستان وطن عزیز ایمان آزمون کے بعد میں نے کسی اور آزمون میں نہیں لیا پر اسکول کے جو بہت بڑے بڑے کمپٹیشنس ہوتے تھے گانے کے پوئم کے اس میں میں نے لیا اور اچھا پردرشن دکھایا اور وہیں ہندوستان میں میں نے بہت سارے کمپٹیشنس میں بھاگ لیا ہے اچھا پردرشن دکھایا اور ایک چیز اور مجھ کو وہاں پر اسکالرشپ ہوتا ہے طبلے کی جس میں آپ کو دکھا جونیئر سینئر ایسے ہوتا تو اس میں میرے کو میرا سلیکشن ہوا میں نے گیا اپنا پردرشن دکھایا میرا سلیکشن ہوا اور وہاں پر انڈیا میں کسی کو اسکالرشپ ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو وہاں پر میں نے اچھا پردرشن دکھایا میرا اسکالرشپ میں سلیکشن ہوا
0: میں نے سنا کہ جو توبیش ہلولی ہے ان کا گانا آپ نے گایا ابھی وہ نیا گانا انہوں نے لکھا آپ کے لیے اگر یہ سیکرٹ نہ ہو تو اس کا ایک پارٹ
1: ایکچولی یہ گانا ابھی لانچ نہیں ہوا ہے یہ میں اسے اگلی بار سنانے کی کوشش کروں گا پر ابھی ایک مکھڑا اگر آپ بول رہی ہیں تو میں گا دیتا ہوں

0: گفتاری تو خود کنده است، رفتاری تو دل بند است، هم بورا دلی فرزان بر مهری تو پیوند است.
1: بہت دھنیواد یہ آپ کی مامی کے لیے،
0: ہاں یہ
1: ان کی کوششوں کے لیے، ان کے ساتھ دینے کے لیے.
0: ایکچولی میں جہاں پر بھی کمپٹیشن یا پروگرام دینے جاتا ہوں، میری ممی ہمیشہ میرے ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ پاپا کو، فادر کو کام رہتا ہے، تو ممی ہر ایک پروگرام، ہر ایک انٹرویو میں میرے ساتھ آئی ہیں، اور اس لیے میں نے یہ گانا ان کے لیے بنوایا.
1: بہت دھنیواد آپ کو. بھوشیہ میں کیا उद्देश्य है, क्या योजनाएं हैं?
0: ऐसे और मेहनत करनी है, अच्छा नाम कमाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और मेरी इच्छा है कि मैं कोशिश करके एक अच्छा बॉलीवुड एक्टर बन सकूं.
1: ओहो, आपके लिए शुभकामनाएं.
0: मैं ये कहूंगा कि आप जिस टैलेंट में अच्छे हैं, ड्राइंग में, म्यूजिक में, डांस में, जिसमें भी आप अच्छे हैं, उसको अपना लक्ष्य बनाइए और उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि बचपन से जो हम करते हैं, सीखते हैं, वो हमें आगे जाके बहुत काम आता है. मैंने भी जैसे बोला, डांस है, ड्राइंग है, जिसमें भी आदमी जो आपको अच्छा लगे काम है, उसमें आपको लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी. क्योंकि अभी, क्योंकि बचपन में हम सब के शरीर थोड़ा नाजुक सा होता है, ऊपर से एक्टिव भी होता है, जिससे हम सबको सीखने मिलता है, तो अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे, तो आगे जाके बहुत काम आता है.
1: मेहनत करनी पड़ेगी.
0: हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी.
1: कौन से कवि है, संगीतकार है कि उनसे आप सहयोग करते हैं?
0: तौबिश इलोली जी थे, उनसे भी बात की, हमने कोशिश करी गाना गाने की, और वहीं एक है, और एक दूसरे हैं सफ़र अली जी, जहाँ पर नेशनल जगहों पे गाना गाते हैं, नेशनल टीवीज पे गाना गाते हैं, उनसे भी हमने कोशिश की है गाना गवाने की. नहीं नहीं, गाना उन्होंने हमारे लिए लिखा है, तो हमने कोशिश करी कि हम एक गाना गाएं उनकी तरफ से, तो अभी वो फ़िलहाल गाना लॉन्च हुआ नहीं है, अभी उस पर काम चल रहा है. बाकी तो फिर मैंने अपने पापा से ही ज़्यादा कोशिश करी है पापा के साथ काम करने की, और स्पेशली बच्चों के साथ भी एम बी सी के, क्योंकि वो भी मेरी मदद करे हैं. कहीं कंपटीशन में जाना होता है तो वो हर वक्त मेरे साथ होते थे, अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो वो साथ देते थे, म्यूज़िक में मेरा बजाने में सहयोग करते थे, और मेरे म्यूज़िक टीचर भी, क्योंकि उन्होंने मेरे से स्कूल में बहुत सारे गाने गवाए हैं, जिससे मेरा नाम थोड़ा सा रोशन हुआ था.
1: आपको आपके भविष्य के लिए, आपके काम के लिए शुभकामनाएं चाहती हूँ. आपका और एक बार स्वागत हमारे रेडियो में, हमारे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, और मैं आपके भविष्य में चाहती हूँ कि आपकी सपने पूरी हो जाए.
0: धन्यवाद, आपने ऐसा मौका दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया. धन्यवाद.
1: इस समय लक्ष्य का एक गाना सुने जिसने सबको हैरान किया है.
2: नमस्ते जय प्यारे सुनने वालों, हमारे प्रसारण खत्म हो जाता है. अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे खुशी है. याद लाते कि आपके साथ हूँ इस प्रोग्राम के डायरेक्टर शोरा न्योजोवा और हमारे प्रोड्यूसर अलीशेर शेरालियेव. कल तक शुभकामनाएं चाहते हैं. रेडियो वजह तो एक दूसरे प्रसारण जा रही है. नमस्कार.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी तोजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अली शेर अलीयेव। इस घंटे की मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान का सांस्कृतिक कोना कोरिया गणराज्य में आयोजित मध्य एशियाई वसंत महोत्सव में स्थापित किया गया। फैजोबोद के लोख गांव में 2400 विद्यार्थियों के लिए नए विद्यालय बनाया जाएगा। जिलों में निर्माण और विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। ताजिकिस्तान में रिपब्लिकन प्रतियोगिता मेगाफोन लाइफ फुटबॉल स्टाइल शुरू हो गई और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। सोलह 17 मई को कोरिया फाउंडेशन और मध्य एशियाई कोरिया सहयोग मंच के सचिवालय के समर्थन से सियोल शहर में मध्य एशियाई वसंत महोत्सव आयोजित किया गया, जैसे कि कोरिया गणराज्य में ताजिकिस्तान गणराज्य के दूतावास ने बताया। इस कार्यक्रम में ताजिकिस्तान का सांस्कृतिक कोना स्थापित किया गया था। इस कोने में फोटोग्राफर शुराजोन योरफ के तस्वीरों का प्रदर्शन किया गया, जबकि शुराजोन योरफ और खुल मोहम्मद योरफ द्वारा प्रस्तुत ताजिक शास्त्रीय संगीत और धुने महोत्सव के मेहमानों के लिए पेश किए गए। सियोल के निवासियों और अन्य मेहमानों ने ताजिकिस्तान ताजिक व्यंजनों के विभिन्न प्रकारों का बेहद आनंद लिया। ताजिकिस्तान गणराज्य के राज्य स्वतंत्रता के 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों के तहत फैजोबोद जिले के एलोखा गांव में माध्यमिक विद्यालय संख्या 11 के मुख्य इमारत का निर्माण कार्य जारी है। ये भवन राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर उपयोग के लिए सौंप दिया जाएगा। ये परियोजना ताजिकिस्तान गणराज्य के सरकार द्वारा साझेदारों के सहयोग से निर्मित की जा रही है। फैजोबोद जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि माध्यमिक विद्यालय की इमारत 3 मंजिला होगी और 2 पालियों में 2400 विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है। विद्यालय भवनों का निर्माण शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं, राष्ट्रीय वास्तुकला के तत्वों और आधुनिक मानकों को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। कक्षाओं और अन्य विषयगत कक्षाओं को आधुनिक उपकरणों और शैक्षणिक सामग्री से सुजित किया जाएगा। भवन में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, भूगोल, श्रम शिक्षा के कक्ष, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, सभा हॉल, आधुनिक भोजनालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगे, जो विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता और सोच के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे। विद्यालय में विशाल और आधुनिक खेल हॉल के साथ साथ फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खेल मैदान भी बनाए जा रहे हैं, जो विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जीवन शैली और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे। इस आधुनिक परिसर में बच्चों के बौद्धिक विकास, आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने और विभिन्न मनोरंजन खेलों में भाग लेने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां तैयार की गई है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम अली रहमान के निर्देशों के अनुसार ये लोग کا گاؤں کے پرویش دوارا پر سبھی آدھونک شکشانے کا سویدھاؤں سے یوکت نئے دیجائن کا ودیالیہ بہاون بنایا جا رہا ہے جس سے راجیہ سواتنترتا کے 45ویں ورشگان کے افسر پر ادگاہت کیا جائیں گا. میگافون تاجکستان نے اپنے 25ویں ورشگان کے افسر پر تاجکستان فوتبال لیگ کے ساتھ مل کر ریپبلکن پروجیکٹ میگافون لائف فوتبال اسٹائل کا شبھارمبھ کیا ہے جو 13 ورش سے کم آیو کے فوتبال کھلاڑیوں کے بیچ آیوجت کی جا رہی ہے. پہلے مقابلے 11 سے 15 مئی تک بختار شہر میں آیوجت کیا جائیں گا. اس یاترا میں پروجیکٹ شہری 9, 13, 18 مئی دوشمبے 19, 25 مئی خوجاند 25, 19 جون اور خوروخ 15, 20 جون میں بھی آیوجت کی جائیں گے. امید ہے کہ ان پروجیکٹ میں لگ بھگ 1500

समाचार प्रसारित हो सांस्कृतिक एवं समाज कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारा कार्यक्रम संग्रहालय दिवस को समर्पित है, जिसे हर वर्ष देश में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस तिथि को समर्पित इस दिशा में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं।

0: वाह वाह वाह, शाबाश। वास्तव में जब अभी आपने गाया, ऐसे फीलिंग होता है कि विदेशी नहीं गाता। ये गाना सैदखुल बिलोलव का है आपने कहा, और मैं जानती हूँ कि ये गाना आपने गाया तजिकिस्तान वतनी अजीज इमान प्रतियोगिता में, तो उनके पास ही गाया है ना। उनकी नजर कैसे थे? वे हैरान नहीं हुए?
1: वो हैरान तो हुए थे क्योंकि एक विदेशी लड़का उनका गाना गा रहा है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे को अच्छा इशारा भी किया कि अच्छे से और गाओ। और ये गाना उन्होंने पहले भी सुना था, क्योंकि उन्होंने एक बार बताया था कि ये गाना उन्होंने पहले भी सुना था मेरा, क्योंकि मैं इस गाने को ओस्पुन से पहले कई जगह गा चुका था। और ये गाना फिर मैंने, क्योंकि ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस गाने को लास्ट राउंड में गाया।
0: अच्छा,
1: तो उन्हीं के सामने गाया, वो बहुत खुश हुए। और मेरे को भी ये गर्व महसूस हुआ कि मैं ये गाना ओरिजिनल सिंगर के सामने गा रहा हूँ।
0: इस समय लक्ष्य का एक गाना ताजिकिस्तान के बारे में सुनते हैं। बहुत धन्यवाद। उस प्रतियोगिता के बारे में आपको कैसा पता चला?
1: एक दिन मेरे पापा ताजिक टीवी देख रहे थे, तो उसमें एड आया कि ताजिकिस्तान वतन अजीज ईमान, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये इसके ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। तो मेरे पापा ने सोचा कि लक्ष्य तुमने थोड़े बहुत गाने गाए हैं, ताजिक भी थोड़ी बहुत आती है, तो क्यों ना हम इस प्रतियोगिता में भाग लें। तो पहले तो ये देखना था कि खोरी जी वहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: तो पहले हम गए वहाँ पर, पूछे तो उन्होंने बोला अलाउड है, तो हम बहुत खुश हुए। फिर हमने गाना गाया, तैयारी करी, एमबीसी के बच्चों से मदद ली, म्यूज़िक टीचर से मदद ली, मेरे स्कूल के मम्मी पापा सब ने बहुत मेहनत करी। फिर मेरा एक राउंड, दो राउंड, तीस राउंड, फिर हमने सारा राउंड अच्छे से किया, प्रस्तुत किया। पहले तो था डिस्ट्रिक्ट का, पहले स्कूलों के लोग आए थे, फिर उसके बाद आए थे शहर से लोग, अच्छे से गाने, फिर आए थे पूरे ताजिकिस्तान से गाना गाने लोग। बहुत अच्छे सिंगर थे, सब बहुत अच्छा गाना गाते थे। पहले तो जब मैं गया तो उन लोगों को लगा कि मैं ऐसे ही देखने आया हूँ या फिर किसी से मिलने आया हूँ। फिर वो मुझसे पूछते थे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तब मैंने बोला मैं यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर हूँ, एक इश्तिरोक्ची हूँ, तो मैंने यहाँ पर भाग लिया है। तो वो लोग सोचते थे अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर उन लोगों को लगा कि मैं हिंदी गाना गाऊंगा।
0: अच्छा।
1: फिर मैंने बताया नहीं, मैं यहाँ पर ताजिक गाने गाने वाला हूँ। तो उन लोगों को बहुत गर्व फील हुआ और फिर मेरी धीरे धीरे करके सबसे दोस्ती बढ़ी।
0: आपको ऐसे वहाँ भाग लेने में डर नहीं लगा कि कितने ताजिक लोग हैं, सब जो वहाँ हिस्सा लेते हैं सब ताजिक है, अच्छा गाते हैं, क्योंकि ताजिकी भी उनको आती है और गाने भी वे जानते हैं कि स्टाइल कैसा है गानों का ताजिकी का, तो फिर क्या महसूस था आपको?
1: पहले तो मेरे को एग्जांपल हायो जॉन फरोगिरी इस टाइप का हुआ मेरे को पहले। मेरे को डर नहीं लगा क्योंकि अगर कोई सिंगर अपने परफॉर्मेंस से पहले नर्वस हो जाए या डर जाए तो उसकी आवाज़ में फिर फर्क दिखता है। तो मैंने बेझिझक बेडरे मैंने अच्छे से गाना गाया।
0: आपका उद्देश्य वहाँ जीतना था या बस भाग लेना?
1: मेरा उद्देश्य ये था कि अच्छा प्रस्तुत करना।
0: हाँ।
1: कि मैं खोरी जी हूँ और मैंने यहाँ पर गाना गाने की कोशिश करी। मेरा बस ये था कि अच्छे से परफॉर्मेंस देना, पोजीशन कुछ भी लगे, पर मेरे को बस अच्छे से परफॉर्मेंस देना था। मेरे को पहले पता ही नहीं था कि मेरी सेकंड प्लेस लगेगी। और मेरी जब सेकंड प्लेस लगी तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरे फादर भी बहुत खुश हुए, पर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। उनकी आंख में आंसू भी आ गए थे ये सुनते से ही। तो जब मेरे को वहाँ पर मौका मिला, दिखाने का अवार्ड मिला, तो सब बहुत खुश हुए थे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर लोग इंडिया को इतना पसंद करते हैं, हिंदी गाना गाने की बहुत कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को मैंने ध्यान पे रख के देखा कि यहाँ पर म्यूज़िक, बीट, ये सब अलग अलग हैं, ये अलग टाइप के गाने हैं। तो अगर मैंने सोचा अगर ये लोग हिंदी गाना गा सकते हैं तो हम इनका गाना क्यों नहीं गा सकते।
0: हाँ बिल्कुल। आप गाते हैं और बजाते हैं, तबला बजाते हैं, और हमारे देश का और आपके देश के कलाओं में भी समानता है। तो आपकी नज़र में किस चीज़ में है समानता?
1: पहले तो भाषा हाँ। यहाँ के गानों पे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जैसे ओसमोन जिंदगी आ जाता है, वो शब्द
0: दिल
1: मोहब्बत ये सब आ जाता है। और ऊपर से ये यहाँ की बीट भी इंडिया के समान है थोड़ी थोड़ी।
0: अच्छा।
1: जैसे कि जो क्लासिकल डांस सीखते हैं उनको शायद मालूम होगा कि एक ताल होती है रूपक ताल, जिसमें सात मात्रा होती है। यहाँ की बीट भी वैसी ही होती है, सात मात्रा वाली। तो हमें तो सेम लगा और डांस में भी बहुत सिमिलर लगा कुछ कुछ जगह, क्योंकि क्लासिकल डांस भी एक हद तक वैसा ही होता है जहाँ पर जैसे ताजिक डांस होता है। और मैं गाता हूँ, बजाना गाना मैंने अपने पापा से सीखा है, और डांस भी मैं कोशिश करता हूँ करने की, और वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है बचपन से।
0: मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि आपने डांस किया।
1: वो मैंने कोशिश करी थी दिखाने की कि अच्छा कोशिश करूँ, वो मेरी मम्मी ने मेरे को साथ दिया था करने में, सिखाया था मेरे को, तो मैंने कोशिश किया अच्छा सा करने की।
0: अच्छा, वो उस प्रतियोगिता के सिवा कौन से और प्रतियोगिताएं थे कि आपने भाग लिया था?
1: वैसे तो तोजिक्सन वतन अज़ीज़मान आज़मून के बाद मैंने किसी और आज़मून में नहीं लिया, पर स्कूल के जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे गाने के पोएम के, उसमें मैंने लिया और अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और वहीं हिंदुस्तान में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है, अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और एक चीज़ और, मुझको वहाँ पर स्कॉलरशिप होता है तबले की, जिसमें आपको दिखा जूनियर सीनियर ऐसे होता, तो उसमें मेरे को मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने गया अपना प्रदर्शन दिखाया, मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहाँ पर इंडिया में किसी को स्कॉलरशिप मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो वहाँ पर मैंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, मेरा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ।
0: मैंने सुना कि जो तोबिश हिलोली है उनका गाना आपने गाया, अभी वो नया गाना उन्होंने लिखा आपके लिए, अगर ये सीक्रेट ना हो तो उसका एक पार्ट।
1: एक्चुअली ये गाना भी लॉन्च नहीं हुआ है। ये मैं इसे अगली बार सुनाने की कोशिश करूँगा।
0: अच्छा।
1: पर अभी एक मुखड़ा अगर आप बोल रही हैं तो मैं गा देता हूँ।
0: हाँ।

0: گفتاری تو خود کند است، رفتاری تو دل بند است، هم بورا دلی فرزان بر مهری تو پیوند است.
1: بہت دھنیواد یہ آپ کی مامی کے لیے،
0: ہاں یہ
1: ان کی کوششوں کے لیے، ان کے ساتھ دینے کے لیے.
0: ایکچولی میں جہاں پر بھی کمپٹیشن یا پروگرام دینے جاتا ہوں، میری ممی ہمیشہ میرے ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ پاپا کو فادر کو کام رہتا ہے. تو ممی ہر ایک پروگرام، ہر ایک انٹرویو میں میرے ساتھ آئی ہیں، اور اس لیے میں نے یہ گانا ان کے لیے بنوایا.
1: بہت دھنیواد آپ کو. بھوشیہ میں کیا उद्देश्य है, क्या योजनाएं हैं?
0: ऐसे और मेहनत करनी है, अच्छा नाम कमाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और मेरी इच्छा है कि मैं कोशिश करके एक अच्छा बॉलीवुड एक्टर बन सकूं.
1: ओहो, आपके लिए शुभकामनाएं.
0: मैं ये कहूंगा कि आप जिस टैलेंट में अच्छे हैं, ड्राइंग में, म्यूजिक में, डांस में, जिसमें भी आप अच्छे हैं, उसको अपना लक्ष्य बनाइए और उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि बचपन से जो हम करते हैं, सीखते हैं, वो हमें आगे जाके बहुत काम आता है. मैंने भी जैसे बोला, डांस है, ड्राइंग है, जिसमें भी आदमी जो आपको अच्छा लगे काम है, उसमें आपको लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी. क्योंकि अभी, क्योंकि बचपन में हम सबके शरीर थोड़ा नाजुक सा होता है, ऊपर से एक्टिव भी होता है, जिससे हम सबको सीखने मिलता है. तो अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे, तो आगे जाके बहुत काम आता है.
1: मेहनत करनी पड़ेगी.
0: हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी.
1: कौन से कवि है, संगीतकार है कि उनसे आप सहयोग करते हैं?
0: तौबिश इलोली जी
1: थे,
0: उनसे भी बात की, हमने कोशिश करी गाना गाने की. और वहीं एक है, और एक दूसरे हैं सफ़र अली जी, जहाँ पर नेशनल जगहों पे गाना गाते हैं, नेशनल टीवीज पे गाना गाते हैं. उनसे भी हमने कोशिश की है गाना गवाने की. नहीं नहीं, गाना उन्होंने हमारे लिए लिखा है, तो हमने कोशिश करी कि हम एक गाना गाएं उनकी तरफ से. तो अभी वो फ़िलहाल गाना लॉन्च हुआ नहीं है, अभी उस पर काम चल रहा है. बाकी तो फिर मैंने अपने पापा से ही ज़्यादा कोशिश करी है पापा के साथ काम करने की, और स्पेशली बच्चों के साथ भी एमबी सीखे, क्योंकि वो भी मेरी मदद करे हैं. कहीं कंपटीशन में जाना होता है तो वो हर वक्त मेरे साथ होते थे. अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो वो साथ देते थे, म्यूज़िक में मेरा बजाने में सहयोग करते थे, और मेरे म्यूज़िक टीचर भी, क्योंकि उन्होंने मेरे से स्कूल में बहुत सारे गाने गवाए हैं, जिससे मेरा नाम थोड़ा सा रोशन हुआ था.
1: आपको आपके भविष्य के लिए, आपके काम के लिए शुभकामनाएं चाहती हूँ. आपका और एक बार स्वागत हमारे रेडियो में, हमारे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. और मैं आपके भविष्य में चाहती हूँ कि आपकी सपने पूरी हो जाए.
0: धन्यवाद, आपने ऐसा मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया. धन्यवाद.
1: इस हमारे लक्ष्य का एक गाना सुने जिसने सबको हैरान किया है.
2: नमस्ते जय प्यारे सुनने वालों, हमारे प्रसारण खत्म हो जाता है. अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे खुशी है. याद दिलाते हैं कि आपके साथ हूँ इस प्रोग्राम के डायरेक्टर शोरा न्योजोवा और हमारे प्रोड्यूसर अलीशेर शेरालियेव. कल तक शुभकामनाएं चाहते हैं. रेडियो वजह तो जो दूसरे प्रसारण जा रही है. नमस्कार.